0: ये थिरी मामा जिला कुनी इस लोग दवा थेन जू के मामा मा का ना लो मा जून छे का ले खाको यो जी सोता या मांग सुनी सी
1: का जे था जी सोता या मांग सी जून हुई सोंग का खोर निये जे मामा लो मा गूस जी
0: थेन जू के थन दो मामा थान दो शुन बचा जे सुवे छे मुशी रा यो जी तुलो खार न्यू ने छे सुनी सी
1: का जे था जी मामा तुलो निये जे लो खा शेश कुन जू जी यू जा
0: 上了嘛，
1: 大不姐，没过年嘛，姐姐。那些活现在，俺的节目是小的，天主给哦。天下闯天哪了，肯德基大麦当劳下订这么贵速度啊？天主给俺做大块啥个吃的？俺的地卡最先的，新不缺的名度，你来俺这随便叫做先的行吧？天主给俺创新的是的。我让你个创新的，开这个，金库都大，金库都很也是牛逼呢。
0: 这次上网老去就要换牙的下，俺换女士呗。你也得是上网别的皮，接着还接不着多。
1: 开始给养养女士。
0: 可算花丫头给，俺们要整个去女姐，我做些困事求求。天主给连不多事了姐，想不想请俺吃酒？俺的马爹心急求。今天让天主给俺卡拉OK大家吃酒，俺的卡拉可要皮。天主龙王的话，天主是你的呢，叔叔疼到老去就是心生不有渣。

0: ये करता है तू आ
1: रा ये चीज तो है थे वे दी गयो ला छे था बांग जोंग रे Sure.

0: ले छास ने रान शे बियो न्यास कोस नि दे खंदे रे आ लाक्तो खबा लो मिदु दिखसा लोसा छास ने रान खबा गियो यों यों आ यों आ आसि नंगदा मिदु रान लो दिबिची अरे थाक्छि छेछो
1: ने खरसिदो बबे बबा खबदु दि थारंग बुजु मार स्लब जुमा